0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इतवार के रोज एक ईरानी मीडिया आउटलेट ने आबनाए हुरमस को दोबारा खोलने के बारे में वजीर खारजा अब्बास इराकची के रिमार्क्स के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। इराकची ने कहा कि ईरान फिलहाल अमरीका के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। उन्होंने इशारा दिया कि ईरान का ख्याल है कि जब तक मुफाहमत की याददाश्त की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हल नहीं निकाला जाता और जब तक वाशिंगटन इन खिलाफ वर्जियों के लिए तेहरान को मुआवजा नहीं देता, मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। इराकची ने यह भी बताया कि ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुरमस में एक नए समुद्री रास्ते के तयन के लिए मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आबनाए को दोबारा खोल दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना दीगर शराइत की तकमील से मशरूत है। तुर्की के वजीर खारजा का कहना है कि अंकरा रूस और यूक्रेन पर जोर दे रहा है कि वो बहिरा अस्वद के अंदर और उसके इर्द गिर्द हमलों के तनाजुर में समंदरी हिफाजत को यकीनी बनाए। हाकान फिदान ने हफ्ते के रोज सहाफियों को बताया कि पूरा बहिरा अस्वद उन इलाकों में शामिल हो गया है जहां जंग फैल चुकी है। तुर्की समंदर से मुतसिल ममालिक में से एक है। फिदान ने मजीद कहा कि रूस और यूक्रेन तमाम तजारती जहाजों पर बिला तफरीक हमला कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारजा ने इंकशाफ किया कि अंकरा ने बहिरा अस्वद के हमले रोकने के लिए मैकेनिज्म के कयाम के बारे में मास्को और कीफ को आगाह किया है। फिदान ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो लॉजिस्टिक सहूलियात पर अपने बढ़ते हुए हमलों पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब रूसी अफवाज ने गुज़श्ता माह बहिरा अस्वद की बंदरगाह से मकई ले जाने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए थे। इसी माह यूक्रेन का एक ड्रोन रूस में बहिरा अस्वद के एक पुरहजूम साहिल पर गिरा था जिससे 7 अफराद हलाक हो गए थे। इतवार के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी अफवाज ने बहिरा अस्वद के जनूबी इलाके ओडिशा में रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 अफराद जख्मी हुए। आफात में मलबे तले दबे लोगों को बचाने के लिए बनाए गए रोबोट्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए हफ्ते के रोज कोबे शहर में एक मुकाबला मुनक्किद हुआ। यूनिवर्सिटियों और टेक्निकल कॉलेजेस के तलबा समेत 12 टीमों के रोबोट्स के फंक्शंस और उनकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी को जांचा गया। मुकाबला करने वालों ने रुकावटों को दूर करने के लिए अपने रोबोट्स को एहतियात से कंट्रोल किया और किसी साने के मकाम से मुशावत रखने वाले 5x6 मीटर के इलाके से इंसानी शक्ल की एक गुड़िया को आहिस्तगी से निकाला। मुंतजिम कमेटी के सरबरा निमी हिरोफूमी ने कहा कि सानियात के असल मकामात और मुकाबले में इस्तेमाल होने वाले मकामात के दरमियान अब भी फर्क है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुकाबला टेक्नोलॉजी की तरक्की और अमला तैयार करने में मदद करेगा।
1: और सामिन, अब आज की अहम खबरों की चंद सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान की मौसमियाती एजेंसी के हुक्काम पीर के रोज मशरकी और मगरबी जापान के लिए एक और झुलसा देने वाले दिन की पेशगोई करते हुए लोगों से हीट स्ट्रोक से बचाव के इकदाम करने का कह रहे हैं। और नागानो प्रीफेक्चर में कीचड़ के सबब पुल टूटने से फंसे तकरीबन 400 अफराद को उस इलाके से निकाला जा रहा है। और ईरान का कहना है कि वो उस वक्त तक अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं करेगा जब तक वाशिंगटन उसके लिए मुआवजा अदा नहीं करता, जिसे ईरान मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार देता है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: साशिमी कच्ची मछली के डिश को कहते हैं। ताबेरा रे मासेन तो आपको याद ही होगा, यानी नहीं खा सकती।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए।
2: साशिमी वा ताबेरारे मासेन। वाताशी साशिमी वा ताबेरारे मासेन। सुमिमासेन, वाताशी साशिमी वा ताबेरारे मासेन।
0: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीजों के साथ मश्क करते हैं। मसलन आप झींगा नहीं खा सकते, तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
2: एबी। एबी।
0: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें।
3: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारे मासेन। सुमिमासेन, वाताशी एबी वा ताबेरारे मासेन।
0: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मश्क करें। खिंजीर के गोश्त की जापानी है
2: बुतानिकु। बुतानिकु।
4: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिकु वा ताबेरारे मासेन। सुमिमासेन, वाताशी बुतानिकु वा ताबेरारे मासेन।
1: अनवर साहब, क्या ताबेरारे मासेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नापसंदीदा चीज के लिए किया जाता है?
0: जी नहीं, अगर आप तिब्बी, मजहबी या किसी और वजह से कोई चीज़ नहीं खा सकते तब भी ताबेरारे मासेन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बहुत कारामद है। और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का लफ्ज मकालमे में ताम और काइतो ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें।
5: इतादाकिमास।
0: जापानी जबान में, बल्कि यूं कह लें कि जापानी सकाफत में, खाना शुरू करते वक्त इतादाकिमास कहा जाता है। ये उस खाने या खुराक की तैयारी से मुंतलिक तमाम अफराद के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ खुद खुराक के लिए अदब का इजहार है। खाना ख़त्म करने के बाद गोचिसो समादिश्ता कहा जाता है। इन दोनों इस्तलाहात इतादा कीमस और गोचिसो समादिश्ता को एक साथ याद कर लेना बेहतर होगा।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
6: इतादा कीमस, गोचिसो समादिश्ता।
7: इतादा कीमस, गोचिसो समादिश्ता।
1: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: इतादाकिमास, गोचिसोसामादेश्ता।
1: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तलाहात इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है।
5: इतादाकिमास।日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。食いしん坊カイトにお任せ。
1: और अब खानों के शौकीन काइतो के मशहूरों का कॉर्नर। आज का मौजू जापानी नाश्ता है।
0: हिरा, जापानी नाश्ते से आपके जहन में कैसा नाश्ता आता है?
1: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकालमे वाला मंजर।
0: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है। बाज लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं। आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है।
1: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे।
0: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है।
1: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
0: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं। कई होटलों में बूफे सर्विस भी होती है जिसमें मुकर्रा पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं।
1: फिर तो मेरे लिए बूफे सर्विस बेहतर है, इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 10 अगस्त सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। मौसम विभाग ने सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी जापान में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त करते हुए लोगों से तापघात से बचाव के उपाय करने का आग्रह किया है। उसने ये भी कहा कि उष्ण कटिबंधीय तूफान चान होम मंगलवार को देश के पूर्वी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि सोमवार को कोफू, गिफू, ओत्सु, सागा और कुमामोतो शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा नागोया और ओसाका शहरों में 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। वहीं हिरोशिमा शहर में तापमान 34 डिग्री, कानाजावा शहर में 32 डिग्री और मध्यवर्ती टोक्यो और आकिता शहर में 31 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। देश के 47 प्रीफेक्चरों में से 7 के लिए तापघात चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो एयर कंडीशनर का उपयोग करें, तरल पदार्थ पीते रहें और बाहर निकलते समय छायादार स्थानों में रहने की कोशिश करें। एजेंसी का कहना है कि उष्ण कटिबंधीय तूफान चानहोम जापान के पूर्वी तट से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार को तोहोकु और कांतोकोशिन क्षेत्रों के काफी करीब से गुजर सकता है। इससे तोहोकु के प्रशांत तट पर तेज हवाएं और समुद्र में भारी बारिश व ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कांतो क्षेत्र में बारिश व ऊंची लहरें और भीषण रूप ले सकती हैं। नीगाता प्रीफेक्चर में भी मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों से तेज हवाओं, ऊंची लहरों, भूस्खलन, निचले इलाकों में बाढ़ और नदियों में उफान के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों को ताजा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। जापान के मध्यवर्ती प्रीफेक्चर नागानो में मृदास्खलन के कारण घाटी पर बना एक पुल बह जाने से लगभग 400 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। फंसे हुए लोगों ने एक अस्थायी पुल के माध्यम से घाटी को पैदल पार किया, जिसके बाद स्थानीय अधिकारी उन्हें पास के रेलवे स्टेशन तक ले जाने के काम में जुटे हैं। शनिवार को भारी बारिश के कारण आजुमिनो शहर में मृदास्खलन हुआ, जिसके कारण एक पुल नष्ट हो गया और उत्तरी जापान एल्प्स में स्थित त्सुबाकुरो दाके पर्वत की एक पगडंडी की ओर जाने वाली सड़क अवरुद्ध हो गई। शिखर के पास एक झोपड़ी और पर्वतारोहण प्रवेश द्वार के पास स्पा होटलों सहित 3 सरायों में लगभग 390 लोग अस्थायी रूप से फंस गए थे। अस्थायी पुल का निर्माण रविवार दोपहर को पूरा किया गया। शहर के अधिकारियों ने फंसे हुए लोगों को वाहन से JR होताका स्टेशन तक पहुंचाया। लोगों को ले जाने का काम सोमवार को भी जारी रहा। प्रीफेक्चर अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 78 लोगों ने इस अस्थायी पुल का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों ने ऐसा करने के बजाय जापान एल्प्स से होकर ट्रैकिंग करके जाने का फैसला किया। खबरों के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 86 लोग सरायों या पार्किंग स्थलों में ठहरे हुए थे। इनमें से 76 होटल कर्मचारी हैं।

0: समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका के साथ वार्ता तब तक बहाल नहीं करेगा जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के उल्लंघन के लिए उसे मुआवजा नहीं देता। ईरान के एक मीडिया केंद्र ने रविवार को होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के संबंध में विदेश मंत्री अब्बास अरागजी की टिप्पणियों पर खबर दी। अरागजी का कहना है कि ईरान इस समय अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहा है। उनके अनुसार ईरान का मानना है कि समझौता ज्ञापन के कथित उल्लंघनों का समाधान होने और उन उल्लंघनों के लिए अमेरिका द्वारा ईरान को मुआवजा न दिए जाने तक वार्ता बहाल करना संभव नहीं होगा। अरागची ने यह भी बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया समुद्री मार्ग निर्धारित करने से जुड़ी ईरान ओमान वार्ता अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलमार्ग का फिर से खुलना कई अन्य शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान का कहना है कि काला सागर और उसके आसपास हुए कई हमलों के मद्देनज़र तुर्की रूस और यूक्रेन से समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान कर रहा है। फिदान ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि पूरा काला सागर एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां युद्ध फैल चुका है। गौरतलब है कि तुर्की भी काला सागर से सटा है। फिदान ने यह भी कहा कि रूस और यूक्रेन बिना किसी भेदभाव के सभी व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि तुर्की ने रूस और यूक्रेन से काला सागर में हमले रोकने की घोषणा से संबंधित एक तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया था। फिदान ने दोनों पक्षों से रसद सुविधाओं पर बढ़ते हमलों को लेकर आत्मसंयम बरतने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि रूसी सेना ने पिछले महीने काला सागर बंदरगाह से मकई ले जा रहे एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए थे। वहीं इस महीने की शुरुआत में रूस में काला सागर के एक व्यस्त तट पर एक उक्रेनी ड्रोन जा गिरा था जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को उक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रूसी सेना ने काला सागर से सटे दक्षिणी क्षेत्र ओदेसा की रिहायशी इमारतों और एक बंदरगाह पर हमला किया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। आपदाओं में मलबे में फंसे लोगों को बचाने के उद्देश्य से बनाए गए रोबोटों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए शनिवार को कोबे शहर में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालयों और तकनीकी कॉलेजों के छात्रों की 12 टीमों के रोबोटों की कार्यक्षमता और परिचालन प्रौद्योगिकी को परखा गया। प्रतियोगियों ने आपदा स्थल जैसे दिखने वाले 5 मीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे क्षेत्र में से बाधाएं हटाने और इंसानी शक्ल के पुतलों को धीरे से निकालने के लिए अपने अपने रोबोटों को बड़े एहतियात से चलाया। आयोजन समिति के अध्यक्ष नीमी हिरोफुमी ने कहा कि वास्तविक आपदा स्थल और प्रतियोगिता में उपयोग किए गए मॉडलों के बीच अब भी अंतर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये प्रतियोगिता प्रौद्योगिकी के विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायक होगी। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।